सामिन ये नशियात आपकी खिदमत में शॉर्ट वेव्स 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के किलोहर्ट्ज़ पर सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। लीजिए आखिर में खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए। तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान ने नस्ल कुश इसराइल के ज़ेर गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आज़म और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी और उर्दन के वजीर खारजा ऐमन अल सफ्ती के साथ टेलीफोनिक मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान मुसल्ह अफवाज ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शुमाली वजीरस्तान में 15 अस्कर गैर फाल कर दिए हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मशरक वस्ता के ममालिक के एक नया सिक्योरिटी ढांचा तश्कील देने की हिमायत की और कहा है कि मसला फलस्तीन को बसे पुश्त नहीं डाला जाना चाहिए। सामिन इसके साथ ही हमारी आज की नशरियात इख्तिताम पसीर होती हैं। अपने मेज़बान मिसबाह शाहीन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया और बहुत खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।

जरूरी होती हैं। समंदर की आम तारीफ ये है कि हर उस पानी के ज़खीरे को समंदर कहा जाता है जो किसी ओकियानूस से मुंसलिक हो, यानी किसी आबी ज़खीरे के समंदर कबूल किए जाने की पहली शर्त इसका ओकियानूसों के साथ बिलावास्ता या बिलवास्ता रब्त है। ओकियानूस के साथ रब्ते के हवाले से पानी की सतह और पानी में नमक की मकदार तब्दील होती रहती है। दूसरी शर्त यह है कि समंदर नहायत वसी इलाके पर फैला होता है और इसकी गहराई झील से ज़्यादा होती है, लेकिन कज़्विन का पानी किसी ओकियानूस में नहीं गिरता क्योंकि कज़्विन चारों तरफ से खुश्की में घिरी हुई है, लिहाजा कज़्विन को समंदर नहीं कहा जा सकता। लेकिन कज़्विन की मुनफरिद खसूसियत जो इस पर समंदर के गुमान को गालिब करती है वो ये कि यह दुनिया की बड़ी तरीन झील है। कज़्विन झील का रकबा दुनिया भर की झीलों के कुल रकबे के 40% के बराबर है। झील का चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ होना और इसके पानी के भारीपन की मकदार का भी बहरी पानी से कम होना इसे समंदर के दर्जे से महरूम रखने की बुनियादी वजूहात हैं। अगर रकबे की वसत पर बात की जाए तो कज़्विन झील बहरा मारमरा से 33 गुना बड़ी है, लेकिन मारमरा बहरा अस्वद और बहरा एजियन से मुंसलिक होने की वजह से समंदर का दर्जा रखता और कज़्विन खुश्की से घिरी होने की वजह से झील की हैसियत रखती है। खुश्की से घिरे होने की वजह से कज़्विन के पानी में नमक की मकदार और इसके ताफ की गहराई बहरा मारमरा से कम है। कज़्विन से छोटा होने के बावजूद बहरा मारमरा की औसत गहराई कज़्विन झील की गहराई से 2 गुना ज्यादा है। सामिन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि